0: 너무 아유 야 아유
1: होइन पाकै आयो चाहिँ लौ आयो आयो भन्दै छौ त के आयो
0: हो त नि रेडियो टाइगर आयो
2: यो हो रेडियो टाइगर 79.2 मेगाहर्ज गर्जन सधैँ बाघ झैं

0: तुम ऐसी कोई भी लड़की नहीं हो, कैसे एक्सप्लेन करूं कि तुम स्पेशल हो?
1: ये भी मैं बताऊं, मैं कैसे स्पेशल हूँ ये मुझे बताना है। तो तुम क्या करोगे? रोल क्या है तुम्हारा?

प्रिय मैग्र कविला हुक्र जय मसी व नमस्कार म अपना हुकन के सामु फे महात्मा प्रसाद चौधरी आगे लाटू आज हाम्रा व्यवस्थापक कना शीर्षकमा वचन हेर जाइत पहिलो कोरन्थी चार अध्यायमा परमेश्वरमा विश्वास योग्यता बारेमा बात बटाइल बा ओ परमेश्वर कसिका हमारमा विश्वास गर्थ कना बात फे बटाइल बा पहिलो कोरन्थी चार अध्यायकी एक पदमा सिका कहत पुरा हमन परमेश्वरका ख्रीष्टका सेवक सम्झ पर्था हमन परमेश्वरका रहस्य बात प्रकट गर्न जिम्मा देगेल बा असीन काममा जिम्मा पाइल सेवक विश्वास योग्य हुई पर्था ऊ रहस्य बात चाहिँ का हुई जुन यहाँ बटाइल बा परमेश्वरका मुक्तिक बात जुन एक समयमा हुईकन बटाइल बा यी चाहिँ एकदम रहस्य बात हो तर आमिन सम्नाइ परमेश्वरका योजना यहुदी मनै हुन बीचमा अही जे मसीहा हुई त कहिका बटाइल बा जे सारा मनैनाको डार करता रही ज्याकर नाउ येशु रही कहिका बटाइल रहा यी येशु जे क्रुसमा गैला ओ दुःख भोगला उमुला उहाँ आफन जीवन अर्पण कैला ताकि जे उहाँमा विश्वास गरी ऊ अनन्त जीवन पाइसे जब अपना परमेश्वरमा आइबी अपना सारा पाप उहाँमा क्षमा हुई उहाँमा ऐना बाघ अपना पश्चाताप कैना कैका कठी अपना जीवनमा कैला पापमा पश्चाताप गर्बी ओ अपना जीना जीवन से अपना लौटबी अपना कैला सारा खराब काममा छोड़बी अपना जीवन का प्रभु कैका ख्रीस्त आफन जीवनमा बलैबी ओ मुक्तिदाता कहिका स्वीकार गर्बी उहाँमा लौ जीवन जिना कहिका कवि कलस्ते अपना उहाँमा मुक्ति पाइबी यी चाहिँ एकदम भार रहस्य बाट आज संसारमा ध्यारमा नै हुक्रबाट जे यी बाटा ख्रीष्ट येशु दोस्रो आगमन सम यी योजना हा जान नै पाइ ओ आप यी बात उहाँमा विश्वास गरल मनै हुक्र बोक्क नेङ्था ओ यी बात अब कौनो मेरिक तरिका से नुकाका नै धैगिल हो आब हाम्रा यी बाट जत्रा ध्यार मनै हुकन फेर बताइ सक्बी यी बाटक मध्यनजर गर्ती यी बातका निचोड यी हो कि जे रहस्य बातमा इच्छा जनाइल बा ऊ चाहिँ विश्वास योग्य बन्न बारेमा प्रमाणित गरही पर्न बा ओ यी बात हाम्रा विचार गरी कहिका मै कहक चाह कि ख्रीस्ट एक विश्वासी हुइला कोर्से अथवा ख्रीस्टका एक विश्वासी हुइला कोर्से हाम्रा हाम्रो विश्वास उहाँमा कसिका देखाइ सक उहाँमा हाम्रो विश्वासलाई कसिका प्रमाणित गर सक्बी यी बात देखाइला हाम्रा ध्यार तरिकासे कह सक्बी पहिलो बात चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत नैतिकतासे देखाइ सक्छ जसका हाम्रा बटाइल रहलै कि जब हाम्रा ख्रीस्टमा विश्वास गर्ती कलसे हाम्रा पापी जीवन छोड्थी ओ हाम्रा परमेश्वरमा मजा जीवन का अभ्यास गर्ती ख्रीस्ट हाम्रा लाग ज्या कैला उहाँमा वाकर लाग धन्यवादी बन्थी और मनै हुक्रा एकदम ईर्ष्या कर्थ और मनै हुक्रा एकदम ईश्वरी अभिभावक बैठा जुन महत्वपूर्ण रहा हमार विश्वास हमार लड़का बच्चन मा सर्थी ओकनाक लड़का बच्चन मा फे ख्रीस्ट येशु संग नेंगाई नेंगठी कना बाटन ओ हमरा विश्वास करथी हुकरा विश्वासी नक लाग ई बात एकदम महत्वपूर्ण बात हो और विश्वासी हुकरा सोचते कि परमेश्वर मा विश्वास योग्य होइन बात चाहिँ एकदम महत्वपूर्ण बात हो जब ई बात वहाँ वचन अध्ययन का संदर्भ मा था हमरा एक विद्यार्थी अस खुलक हो का करे कि ई चाहिँ चेला हुइन अर्थ चाहिँ हो येशु हा पछ्याल पहिलेक मनै हुकरा चेलाओ हुकरा हुइता ओ उहर से आज चेला हुकरा ओ मनै हुकरा हुइता जे वहाँ वचन अध्ययन मनन ओ वहाँ बारे मा जाना खोजना ओ वहाँ बारे मा ओ वहाँ बुद्धि मा वहाँ जस्ता बन खोज्न चाहिँ ओ जे ख्रीस्ट का सुसमाचार हा सुनाइ ख्वागत ओ ख्रीस्ट का गवाही हा दिह ख्वागत ऊ चाहिँ चेला यी काम चाहिँ येशु हमार जीवन मा हुआएकै का वहाँ चाहत उहाँ मत्ती 28 अध्यायमा बटाइल बात हाम्रो जीवनमा हुएकै का उहाँ चाहत कि हाम्रा सारा जातिक मनै हुक्रा चेला बनाइकन उहाँकी इच्छा हो उहाँ वर्षे यी सब डगर चाहिँ उहाँमा विश्वास योग्य हुइन डगर तर यी मध्ये कौनो फे बाधाको रूपमा नै हो यी सक्कु काम करल बा ज्याहुला से फे मै आज विश्वास योग्य और भागका बारेमा बात बटुइम और भौतिक चाजमा हाम्रा विश्वास योग्यता हा कसिका काम कर सक जाइकन बात हामन दिहल बा जुन चाज हमन आशीष का रूप में दिहल उ चाजक साथ हमरा का करती हमरा फाइल पैसा हा हमरा कसी का खर्चा करती परमेश्वर मा विश्वास योग्य होइना हो वहां से पहिला आशीष मा हमरा विश्वास योग्य होइना ई एकदम आधारभूत बात वहां देलक चाज हम हमरा कसी का खर्चा करना फजूल खर्चा नहीं कहना ओ परमेश्वर मा महीन देलक चाज हमें एकदम होशियारी के साथ प्रयोग कहना हो कि ताकि हमरा परमेश्वर का महिमाक लाग वहाँ का राज्य के लाग खर्चा कर सकी और मेरे से कहा ब्याला हमरा हमार पैसा से परमेश्वर का आराधना करा पड़ता जब हमरा कौनो चार्ज या रुपया पैसा हाँ प्रयोग करती हमरा हमार फायदा के लाग नहीं हमार मजा कपड़ा के लाग नहीं हमार ऐस आराम के जीवन के लाग नहीं तर हमार भौतिक चार्ज चाह आर्थिक चार्ज से परमेश्वर का राज्य में ध्यार आत्मा है जीतक लाग प्रयोग करा पड़ता ये काम चाहिए एक सेवक का काम हो
एक सेवा असीन काम कर बारेमा एक विचार करी रुपया पैसा हमन एकदम चाहना चाज हो हमरा हमार रुपया पैसा है केहरो खर्चा करती तो हमरे हमार रुपया पैसा हाँ केहर प्रयोग कर लाठी कही का जब हमरा लेखा जोखा धरबी हमरा सहज हमार खर्च विवरण है हेर का ठहा कर सकी इसे हमरा कमाल हमार रुपया पैसा है कुन हेराई से हेरा टिकाई का सहजा ठहा कर सकी क्रिश्चियन मने हुकरा एकदम रहस्य बात परमेश्वर का वचन से बुझल बात कि पैसा शक्ति चाहिए खर्च कहना शक्ति चाहिए नहीं हो व्यापारिक नीति चाहिँ पैसा है खर्च गर प्रथा कना हुई था ऊ चाहिँ गलत हो पैसा सही शक्ति कलक पैसा से पैसा कमैना हो इन और मेरे से कह बेला अपना पक्ष में हो के ध्यार पैसा कमैना हो तर विश्वासी हुकरा आकर विरोध करता का करे कि हरेक चार्ज हमन दिहल बा ताकि हमरा परमेश्वर का महिमक लागे आकर व्यवस्थापन करी वो से हमार मुख्य उद्देश्य चाहिए हमार लाग ध्यार कमैना नहीं हो तर हमारे प्रयोग करती क्रम में और जहां मजा प्रभाव पड़ना हो ताकि ऊ मनै हुक्रा ख्रिस्टमा आइसकेका मनै हुक्रा परमेश्वरमा धन्यवादी हुई अब विचार गरी मनै हुक्रा परमेश्वरमा धन्यवादी हुई कि नै हुइकना बाट हेर्न एकदम सजिलो तरिका हो ओ ख्रिस्ट येशूमा पहिला जिम्मेवारी हाँ हुक्रा मजासे पूरा करत कि नै गर्छु त ऊ बाट हेर्न एकदम सजिलो तरिका चाहिँ हुक्रा परमेश्वरमा देना भेटी देना आराधना चाहिँ हुकनक परमेश्वर हे कुन प्रकारले लेला बाट कना आस्था जनाइ यदि कौनो मन यहाँ परमेश्वरमा देना काम नै करत कल से ऊ बात से यह प्रमाणित हुई था कि ऊ मन यहाँ विश्वासमा कमजोर बा कि त ऊ मन यहाँ विश्वास नै बितिस आज ध्यार मने हुक्रा ओकरा रुपिया पैसा है सही काम में प्रयोग कर नहीं सकता ओ मै आग्रह कर चाहू कि हरेक विश्वासी मन हुक्रा हमार भौतिक चार्ज हाँ आर्थिक चार्ज हाँ एकदम होशियारी साथ चलाई पड़ता एक चोट विचार करी कौन मन यहाँ 1000 रुपया कमाई कल से वाकर 10% 100 रुपया परमेश्वर में दशांश आना ये मन यहाँ एकदम कमजोर गरीब वाकर ध्यार जिम्मेवारी बाटिस रफे परमेश्वर में अपन दशांश लेकर आए एक विश्वासी यह काम द्वारा विश्वास में बहरना काम हुई था अवश्य थे जब ध्यार पैसा रही कल से जब ध्यार चार्ज रही कल से ध्यार चार्ज हाँ परिपूरक का काम कर सकती था ओ परमेश्वर का राज्य में ढ्यार गरीब दुखी हुकन दिया ओ हुकना बीच में काम कर सकती था यदि कौनो मनैया थे एकदम ढ्यार धन संपत्ति कमाए ओ आकर 2-3% के लिए परमेश्वर में आनल कल से ऊ मनैया एकदम दान से के लिए दिया वसिन मनै हुकन मार प्रश्न काबा कल से ऊ मनै हुकना विश्वास जाति खोटा यदि कौनो मनैया परमेश्वर में अपन भौतिक संपत्ति आना निशेकट कल से ऊ मनैया जाति का विश्वासी नहीं भी ऊ मनै हुकरा वसिन विश्वासी नहीं भी देखावटी विश्वासी भी यदि अपना जातिक रूप में येशु है जन्मी कल से वहां मा अपना मन होकर मुक्ति की लाख आने लिखना बात हाँ जन्मी कल से और संसार में परमेश्वर का राज्य अपना सहयोग कर ठनवी कल से और सहयोग के कारण जन्मी कल से अपना वहां मा दान से देना बात अथवा दान से देना वाला मनैया नहीं बन अपना वहां का राज्य विस्तार में एक सहयोगी बना सक भी यदि अपना नैदेवी कल से अपना असल भंडारे नहीं बीती एक पद्मासी का कथा तुरहा हमन परमेश्वर का ख्रीस्ट का सेवक समझा पर था हमन परमेश्वर का रहस्य बात प्रकट करना जिम्मा दे गए बा हमरा रहस्यमय बात बटवाल होला ही का परमेश्वर अपना भौतिक चार्ज नहीं देला जुन चार्ज हाँ अपना अमीन समरला बाटी इ बात महीन योसेफ का बात है याद दिया जुन बात उत्पत्ति 39 अध्याय में बताएल बा आई मैं सबको जनक लाख पढ़ चाहू यहाँ 80 का लिखल बा वह ओर से वहां की निगाह योसेफ के ऊपर रहा योसेफ है हुकार सेवा सुसार करत ओहू कहीं अपन घर मुख्य कामदार बनाकर वो कहीं अपन थे रहल सब चादर जिम्मा वहां देला ऊ अपन घर ओ अपन थे रहल सब चादक मुख्य बनेला ओ बनाएल समय थे से परमेश्वर हुकार खातिर मिश्रिक घर में ध्यार आशीष देला एकदम मजा बात त यो हो कि योसेफ कमुइया रहला तर फिर परमेश्वर उहिना आशीष देला का कर कि ज्या चाज दिहल रहा उ चाज में एकदम बुद्धिमान तरीका से वाकर सदुपयोग योसेफ करल रहा ई बात विकास यहाँ हुई ओ ई मेरिक तरीका चाहिए आज हमरा हरेक विश्वासी मने हुकरा करा पर्ना बा परमेश्वर देला हरेक चाज हमरा लिह नहीं सकती वाकर सदुपयोग कर नहीं सकती वो वर्ष क्रिश्चियन हुकरे हमरा कुछ चाज कर नहीं सकती हमरा मजा से सदुपयोग कर नहीं सकती खाली खर्चा खर्चा के लिए करती भौतिक चार्ज में हम
हमार खर्च हुइथा जुन चाहिँ हमार ध्यार महत्व रहक जीवित परमेश्वर भन्दा हाम्रो वाका आराधना गर्थे वाकामा बढी ध्यान दे ठिकलस्ते ऊ चाहिँ एक मूर्ति पूजा हो कि धर्म संस्था मन बताए यदि अपने एक सच्चा विश्वासी हुइटिकलस्ते अपना परमेश्वर भौतिक परमेश्वर नै हुइता कहिक आफ्नो बुझ पर्था असिन काम विश्वासी मनैहुक्र नै गर्था यी चाहिँ एक खेल असक एक विश्वासी मनै आफ्नो पैसा भौतिक चार्जमा फाक नै पर्था हाम्रा हाम्रो विश्वास साँचो परमेश्वरमा धरा पर्था उहाँ हमन ज्यादिहल बात उक चार्ज हाम्रो एकदम मजासे मिलेन बारेमा हेर पर्था खेलवाड थन्न बात चाहिँ एक व्यवस्थित लिन बात नै हो यी चाहिँ बाचा हाँ औ प्रगति हाँ बेकार थन्न हो वर्ष खेलवाड नै कैना हो कागर कि परमेश्वर महिन्देलक चार्ज हम बेकार जाए नहीं दी हम हमारा वागर एकदम मजा से व्यवस्थापन करी कही वहां हमन हमार जीवन से चाहता ई बात हम अपना बुझी कही मैं कहक चाहबो ओ परमेश्वर अपना देलक चार्ज हाँ अपना कसी का व्यवस्थापन करती वहां अपना यीशु मा मुक्ति देला बाट तर अपना देलक हरेक चार्ज पैसा समेत परमेश्वर का आशीष हो वहां चाहता कि सब चार्ज अपना एकदम होशियारी चार्ज बुद्धिमत्ता चार्ज वाकर प्रयोग करे अपना परमेश्वर का देलक चार्जक व्यवस्थापक एक भंडारे हुई था अपना से ज्यादा उस सब चार्ज परमेश्वर अपना हाँ उधारी दे लगाता इस सब चार्ज एक दिन हेरा का चल दे जसा का दोसरो पत्रुस तीन में बताएल बा यीशु दोसरो आगमन नहीं हुई सम हमारा या का सदुपयोग एकदम बुद्धिमान तरीका से कहना बा जब प्रभु ही वहाँ हरेक चार्जक लेखा हमन से लिए ही और वहाँ देलक हरेक चार्ज में हमारा कतरा ईमानदार हुई वाकर हिसाब किताब वहाँ करही आज की वचन द्वारा परमेश्वर अपना ध्यान आशीष दिया आमीन।

0: Hello everyone.
1: Namaste, main Sara Ali Khan.
0: Main hoon Vicky Kaushal.
1: We hope you love this music video.
0: Do like and share and do not forget to subscribe.
2: ये है आपका रेडियो रेडियो टाइगर बर्दिया की आवाज़ वॉइस ऑफ बर्दिया वॉइस ऑफ बर्दिया।

प्रभुसँग सोधौं है त दुई चारवटा कुरा। पहिला त प्रभुको शरण लौ रक्षा गर न, पहिला त प्रभु